सप्ताहस्तञ्च द्विमुद्दानं द्विनासिकं षण्नेत्रञ्च चतुःश्रोत्रं